0: किसे भूंगेल कब साइन में इंडियन हमें जाते हैं नागी कोगिले जोगी ने पिकिन का इन्हें तो तब केन्या अराबु तो किंगों किंगन गुल्ले वो इंडिया रामो ये माते नीत को जरा सीज को गए को गा ये तो निकटी नहीं न्यू कुमाके समझना सीज पितू ताके कंगे तीन गुराया ने तासाम में मने बोके जिसे मुद कोगे जिसे चून मीटा योलीन को बामु मरे जो सुगन्य को सामे आगे जेक तायोलीन गावेंडी आजेंगे जोरुनो गुलीन कुमोलीन आजेंगे जहाँ लांडा एंग नेगे आजेंगे जे मुताएगे क्या ये तुम तो कह रहते तुम तो
1: तुम तो तामुआ एंग एमओएफएम
2: एडविन अरब जानुई कोबाटा एरिक